अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति।

0: महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

श्री गोविंद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्री कृष्ण संन्यास एवं योग की समानता एवं फल तृष्णा के त्याग पर बल देते हैं। प्रभु कहते हैं कि वशीभूत मन ही मानव का परम मित्र होता है तथा वशहीन होने से मन ही परम शत्रु बन जाता है। श्री गोविंद कहते हैं कि सतत यत्न व योग अभ्यास से इस हठी व चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है।

0: मन है।
1: अर्जुन का संशय दूर करते हुए ऋषिकेश कहते हैं कि साधन के अभाव में श्रद्धावान किंतु असिद्ध पुरुष एक उच्च सदाचारी परिवार में पुनः जन्म लेता है, जहां वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग से सिद्धि प्राप्ति हेतु आगे प्रयत्न करता है।

अपने देश भारत की प्रमुख नदी गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। युगों युगों से भारत के आध्यात्म और वैराग्य को सींचने वाली अनवरत अमृत धार है गंगा।

0: हमारी आस्था, हमारे जीवन, हमारी ऊर्जा और उल्लास की नदी है गंगा। पवित्रता और निर्मलता की जलधार है गंगा।
1: मानव के पंचकर्मों में एक है गंगा, शिव का रूप है, विष्णु का अंश है, ब्रह्म पोषित है गंगा।

0: गंगा वो नदी है जो मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रिय है। महाकाल, मृत्युंजय, महासत्य, महादेव शिव की प्रिय है गंगा। उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को अस्तित्व प्रदान करने वाली गंगा ही है। तभी तो गणेश को गंगे भी कहते हैं।
1: गंगा के किनारे ही महात्मा बुद्ध को बोधि गति प्राप्त होती है। अपने पांच शिष्य मिलते हैं। रामायण की कथाओं में गंगा कभी प्रभु राम और केवट के मिलन की साक्षी बनती है, तो महाभारत में शांतनु की पत्नी और भीष्म पितामह की माता बनकर सामने आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ।
0: गंगा अवतरण से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। शिव पुराण के अनुसार गंगा हिमालय की पुत्री और पार्वती की बड़ी बहन है। जब भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के बलिदान के बाद मानसिक संताप से गुजर रहे थे, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शिव का पुनर्विवाह गंगा से करा दिया। हर हर गंगे, गंगे,
1: हर हर गंगे, गंगे। मान्यता है कि गंगा ब्रह्मलोक से शिव की जटा में आई, परंतु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध पर उन्होंने अपनी जटाएं निचोड़ कर छोड़ी, जिससे अनेक धाराएं निकली। इनमें तीन प्रमुख हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। शिव ने अपनी जटा से एक धारा पृथ्वी पर उतारी, जिसे मंदाकिनी नदी मानते हैं। दूसरी धारा स्वर्ग चली गई, जिसका नाम अलकनंदा हुआ। यही धारा स्वर्ग से उतरकर बद्रिकाश्रम से प्रवाहित होती है। तीसरी धारा भागीरथ के रथ के पीछे चलकर देव प्रयाग आई और भागीरथी कहलाई।
0: भागीरथी नाम की इस जलधारा का संगम देव प्रयाग के पास अलकनंदा से होता है। फिर आगे बढ़ती ये सरिता तीर्थ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी को समाहित करती है। यहीं से इस निर्मल जलधारा का नाम गंगा होता है।

हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की दशमी को पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ है। ये दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में लगाई एक डुबकी पापों से मुक्ति दिला देती है।

0: त्रिवेणी से अपनी सहभागिनी यमुना की विशाल जलराशि अपने में समेटकर गंगा पूर्व की दिशा में बहती हुई भारत की गौरवमय संस्कृति की प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध काशी नगरी पहुंचती है। काशी, जिसका आधुनिक रूप में प्रचलित नाम बनारस या वाराणसी है, संसार के प्राचीनतम सजीव नगरों में से एक है और गंगा तट पर बने अनगिनत घाटों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है।
1: माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए इस शिवप्रिया नगरी में गंगा का भव्य स्वागत होता है।

0: गंगा के तटों की महिमा और गंगा की सांस्कृतिक विरासत पर डॉक्टर के आर शर्मा की बात याद आ गई। आप भी सुनिए।
1: हमारे हिंदू धर्म में जो भी कार्य है वो गंगा से जुड़ा हुआ, जो जीवन यापन है वो उसमें समय समय पर गंगा जल का योगदान होता है। अगर आप देखें तो बच्चे के पैदा होने के बाद जब उसका यज्ञोपवीत किया जाता है तब भी गंगा जल की उपयोगिता होती है। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें गंगा जल की उपयोगिता होती है। सांकेतिक रूप में उसको हम लोग उपयोगिता में लाते हैं। आप देखेंगे कि जब मरने वाले होते हैं तब भी लोग गंगा जल अपने घर में रखते हैं ताकि उसके मरने से पहले उसके मुख में गंगा जल के कुछ बूंदे चली जाएं तो उसके जीवन पवित्र हो जाए। साथ में ये भी आप देखेंगे कि उसी गंगा के तट पर लोगों की इच्छा होती है कि हमारी अंतिम संस्कार भी उसी गंगा के किनारे हो। तो जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक गंगा की महत्ता हिंदू समाज में आप पाएंगे।
2: तीन लोक से न्यारी काशी, ये कहावत सदियों से प्रचलित है जो काशी नगरी के न्यारेपन को उजागर करती है। गंगा के महत्व को बखान करती हुई पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर इंदिरा शर्मा कहती हैं,
3: गंगा के जल में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनके कारण हम इस नदी को एक पवित्र और अमृत तुल्य नदी मानते हैं। हम अपनी जो जड़

0: उसको अगर हम ऋषिकेश शुरू करते हैं तो वहीं से ये गंगा जो है एक तीर्थ के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है। यद्यपि जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ तो तीर्थ है ही, गोमुख तीर्थ है ही, लेकिन विशेष रूप से जहाँ तक जन साधारण इस तक पहुँचा है उसको हम ऋषिकेश से मानते हैं, जहाँ पर ये मैदानी भाग में आती है। यद्यपि इसकी जो धारा है बड़ी तीव्र गति से बहती है, लेकिन इसके किनारे मंदिर, आश्रम, ऋषियों के आश्रम रहे हैं जहाँ पर लोगों ने वेद ऋचाएं गाई हैं, अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ से इसकी महत्ता जो है वो शुरू होती है हमारे जीवन में। ये इस कदर रच बस गई है कि हर भारतीय का ये सपना होता है कि जीवन में वो गंगा के किनारे जाए, उसमें स्नान करे और उसको ऐसा विश्वास है कि उसके जितने पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं और उसकी आत्मा जो है पवित्र हो जाती है।
1: मंदिर, मस्जिद, पंडे, पुजारियों के इस शहर में विभिन्न संस्कृतियों के रूप देखने को मिलते हैं। एक ओर काशी विश्वनाथ और संकट मोचन का दिव्य स्थान है तो दूसरी ओर कबीर चौरा और संत तुलसीदास का तुलसी घाट। नृत्य विशारद बिरजू महाराज हो या शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, महान साहित्यकार भारतेंदु और महाकवि जयशंकर प्रसाद इसी नगरी के निधि रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहीं गंगा तट पर स्थित है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां रोज सुबह अपनी शहनाई गंगा जल से धोते थे। उन्हें गंगा बहुत प्रिय थी। जब भी बनारस में होते थे तो गंगा को अपनी शहनाई सुनाना नहीं भूलते थे।
2: भारतीय साहित्य भी गंगा के स्तुतिगान से अछूता नहीं रहा है। कई रचनाएं गंगा को ही समर्पित की गई हैं। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी उनमें से एक है।

0: ಜನಿತ ಜಗತ ಖಂಡ ಪರಶೋಹ।
1: तीर्थ नगरी काशी के मनोरम घाटों से आगे प्रवाहित होती हुई गंगा धारा मालवीय पुल से आगे मुगल सराय होती हुई बिहार प्रदेश में बक्सर पहुंचती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव के साथ जनकपुर स्वयंवर में जाने के लिए यहीं से गंगा को पार किया था, जो अब रामघाट के नाम से प्रसिद्ध है।

0: बक्सर से आगे चलकर गंगा पहुंचती है पटना, यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। मंद मंद गति से पूरब की ओर प्रवाहित होती गंगा की धारा पटना पहुंचने के पहले सरयू और सोण नदी की जलधाराओं को भी अपने में समेट लेती है।
1: दीपावली के 6 दिन बाद जब छठ पूजा मनाई जाती है तो यहाँ गंगा के घाटों पर आस्था और विश्वास की एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है।
2: छठ की पूजा में गंगा के अंदर हम खड़े होकर पूजा करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो गंगा मैया से भी मांगा जाता है, केवल सूर्य से नहीं।
1: आप हैं प्रसिद्ध लेखिका और संपादक डॉक्टर मृदुला सिन्हा।
2: मांग होती है सब चीज की, और उसमें अन्न है, जल है, धन है, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन गंगा से भी मांगते हैं और सूर्य से भी मांगते हैं। वहाँ दोनों को समान आसन पर बैठा दिया जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि गंगा को लोक जीवन से और संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और सही बात तो यह है कि गंगा हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ी प्रतीक है, जो इसकी अविरल धार है, और वो बहती रही है, बहती रहेगी।

0: गंगा परिवहन का जरिया रही है, अब भी है। गंगा के इस पक्ष के बारे में विस्तार से बताते हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और लेखक श्री दुर्गादास गुप्ता।
1: नेशनल वाटरवे की तरह है, आज से नहीं हजारों साल से। छोटे नाव, बड़े नाव, सब पे चल कर के लोग जाते आते थे, उनकी यात्राएं हुआ करती थी, लोग जाया करते थे, माल ढोया जाता था। उसका आज भी उदाहरण ये है कि छोटे छोटे इस ज़माने में भी बजरे पे सामान लेकर के लोग जाते हैं, लेकिन जगह जगह चूँकि इतना बॉटल नेक आ गया है नदी में कि अब वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसी संदर्भ में मैं ये कहूँ कि अगर रेलवे के ऊपर, सड़क के ऊपर से अगर आपको भीड़ कम करनी है तो एक विकल्प के रूप में आपको देखना चाहिए कि जो लोग आराम से चलना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं भारत को या भारत के इस हिस्से को, तो उनको बजाय पैलेस ऑन व्हील्स के या राजधानी के, वो गंगा को इस तरह से विकसित करना चाहिए ये यात्रा करने का कि लोग उसको, उसका सुखद अनुभव ले सकें और लोग समझ सकें कि हमारी परिपाटी क्या है, हमारी परंपरा क्या रही है, गंगा का महत्व क्या है इस बारे में। क्योंकि जब तक हम इसको हरिद्वार से लेकर के और नीचे हुगली तक नहीं जाते हैं तो हम गंगा कितनी महान है, गंगा की क्या आवश्यकता है, गंगा कैसी थी, कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये हम उस दृष्टिकोण को नहीं विकसित कर पा रहे हैं। और जहाँ तक गंगा के सफाई की बात है, गंगा जब तक साफ नहीं होगी तो परिवहन उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। और नई टेक्नोलॉजी से गंगा को साफ करना होगा, ड्रेजिंग होनी चाहिए, फ्लोरा फौना को बचाना चाहिए और उसके ऊपर परिवहन जो हो, पैसा जो खर्च हो, उससे कमाई हो, उसका एक अलग कोष बने और गंगा को और दूसरी नदियों को धीरे धीरे करके उस कोष से जोड़ देना चाहिए।
0: नदियों को जोड़ने और उन्हें परिवहन का एक माध्यम बनाने की प्रक्रिया पर सोच विचार किया जा रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में गंगा के बारे में श्री दुर्गादास गुप्ता आगे कहते हैं,
1: हजारों हजार साल से ये वाटर हाईवे था और रही है, जिसका उपयोग होता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर गंगा को समझना है, गंगा के बारे में बात करनी है, गंगा की महत्ता समझनी है आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकल करके, तो सबसे पहले एकेडमिक वर्ल्ड को ध्यान देना पड़ेगा कि गंगा के ऊपर या नदियों के ऊपर स्कूल ऑफ स्टडीज़ बने। काफ़ी जियोलॉजिकल डेटा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत है, लेकिन वो स्टडी, जो इन डेप्थ स्टडी, जो सघन अध्ययन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है।

पटना शहर गंगा तट के दाएं किनारे पर दीघा घाट से लेकर पूर्व में फतुहा तक फैला है। इसे विशाल साम्राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त और महान गुरु चाणक्य की कर्म भूमि रहने का संयोग इसी पाटलिपुत्र को मिला। चंडाशोक से अशोक बना मगध का सम्राट यहीं गंगा तट से अहिंसा और करुणा का संदेश दे गया।

0: जीवन पा।
1: सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा में आकर मिलती है नेपाल में हिमालय से निकलकर आने वाली गंडक नदी। यही वो स्थान है जहां हर साल विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है।
2: तो हर महिमा आगमा अपार है गंगा मैया।
1: अनेक छोटी बड़ी नदियों की विशाल जलराशि लेकर गंगा अपने स्वरूप का विस्तार करती है और पहुंचती है सुल्तानगंज। यहाँ की विशेषता और गंगा के बारे में बताते हुए पूर्व राजदूत और सांसद डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस कहते हैं,
3: भागलपुर जिला में गंगा का महत्व सुल्तानगंज के गंगा से है। गंगा जब चलती है हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी की ओर, तो दो जगह ही ऐसी जगह है जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है, एक तो बनारस में और एक सुल्तानगंज में। उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ज्यादा महत्व है। लोग वहाँ यदि स्नान कर लेते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें असीम शांति प्राप्त हो गई। अभी भी हर साल लाखों लोग सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर सुल्तानगंज का पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज का पहले नाम गंगा धाम था। औरंगजेब ने इसका नाम बदल कर सुल्तानगंज कर दिया, जहां उसके फौजी छावनी डालते थे और वहीं से वो लोग बंगाल आसाम पर कूच करते थे। सुल्तानगंज में ही लोग कहते हैं अजगबीनाथ मंदिर में जहन्नुम मुनि रहा करते थे, जिनके नाम पर गंगा का नाम वहां से जहन्नवी पड़ा। एक बार किंवदंती है कि जहन्नुम मुनि ने गंगा को पी लिया क्योंकि गंगा बहुत किलोल करती थी। भागीरथ ने बहुत अनुनय विनय किया, तब जहन्नुम मुनि ने गंगा को अपने जांग को चीर कर गंगा को निकाला। अभी भी सुल्तानगंज के बगल में एक गांव है जिसका नाम जहन्नुम मुनि पर है और अपभ्रंश होते होते अंग्रेजों के टाइम में इसका नाम जहांगीरा पड़ गया। बहुत ही भव्य दृश्य है सुल्तानगंज के गंगा का, और देवघर की कल्पना नहीं कर सकते हैं यदि सुल्तानगंज की गंगा का जल वहां नहीं पहुंचे। सुल्तानगंज और देवघर का संबंध बहुत ही निकटतम है।
4: संस्कृति और विधा वैभव का केंद्र भागलपुर से आगे पूर्व की ओर स्थित है फरक्का बराज यानी गंगा नदी पर बना विशाल जल अवरोधक। एक समझौते के अनुसार गंगा जल का एक उचित हिस्सा बांग्लादेश की ओर प्रवाहित किया जाता है।
1: फरक्का से आगे गंगा की शेष धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुँचती है। यहाँ इसके किनारे स्थित है माँ काली का प्राचीन और विशाल दक्षिणेश्वर मंदिर, जो रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली भी रहा है।
4: पर्वतराज हिमालय से निकलकर लगभग 2500 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करने के बाद गंगा की धारा पहुंचती है डायमंड हार्बर, जिसके आगे बंगाल की खाड़ी का लहराता सागर और सुंदरी वृक्ष वाले सुंदर वन के जंगल फैले हैं।
1: गंगा कई हिस्सों में बढ़ती हुई धरती लोक पर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव गंगा सागर पहुँचती है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां माँ गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था।
4: इस स्थान का बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत में अनादिकाल से ही गंगा जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी रही है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की प्रतीक रही है। उसकी अविरल और निर्मल सतत धारा के बिना भारतीय अस्तित्व और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।

0: स्वर्ग से धरती पर उतरकर सभी को अपने आंचल में समेटती, दोष मुक्त करती, अभय दान देती गंगा सागर से मिलकर पाताल लोक चली जाती है और त्रिलोक गामिनी बन जाती है। जो मानव कल्याण के लिए धरती पर उतरती है वो गंगा है, जो मानव को स्वर्ग तक ले जाती है वो गंगा है।
1: सदियों से भारत की धरती पर बहती हुई गंगा इस देश की पहचान बनी हुई है, पर अफसोस की बात यह है कि वही गंगा अब अपनी पहचान खोती जा रही है।

0: गंगा थक रही है, मर रही है।
1: गंगा बहती हो क्यों?
0: अपनी अज्ञानता, लालच और स्वार्थ से हमने इसे इस हद तक प्रदूषित कर दिया है कि आज मोक्षदायिनी गंगा अपने मोक्ष के लिए हमसे मदद मांग रही है।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि देवाधिदेव महादेव की आज्ञा पाकर कृतिकाओं ने कुमार कार्तिकेय को वापस कैलाश धाम भेज दिया। इस समाचार से दैत्यों में चिंता की लहर दौड़ गई। दैत्य माता दिति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से तारकासुर की प्राण रक्षा का उपाय करने को कहा। विधि का विधान जानते हुए शुक्राचार्य ने कुछ भी ना कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। दिति क्रोधित हो उठी। कूटनीति का सहारा ले दिति ने तारकासुर की आसुरी प्रवृत्तियों को पुनः जागृत किया। देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। असुर पराजित हुए तथा शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके त्रिलोकी को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, इससे तो यही कथा

0: चरितार्थ हुआ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, न दिति तारकासुर की बुद्धि हरती, न वो युद्ध करता, न उसकी मृत्यु होती।
1: विप्रवर शौनक जी, आपका ये कथन यदि पूर्णतया सत्य नहीं तो असत्य भी नहीं है।
0: वो कैसे सूत जी?
1: आपने कहा कि यदि दिति तारकासुर की बुद्धि ना हरती तो वो युद्ध ना करता, मृत्यु को प्राप्त ना होता। ये पूर्णतः सत्य नहीं है। काल अपना समय और स्थान महाप्रभु के आदेश पर ही निर्धारित करता है। यदि दिति तारकासुर को ना उकसाती तो कोई अन्य इसका माध्यम बनता।
0: सूत जी, यदि मेरा कथन सत्य नहीं तो असत्य भी क्यों नहीं है?
1: परम ज्ञानी शौनक जी, जब काल ने निश्चित कर ही लिया हो तो कौन उसे बच सकता है? प्राणी अपने मन की संतुष्टि के लिए कहीं भी भागता फिरे, अंततः पहुंचेगा वहीं जहां काल ने उसे बुलाया हो।
0: अब सत्य कह रहे हैं सूत जी। अब ये बताएं कि तारकासुर के नाश के पश्चात काल ने क्या गति ली?
1: महाज्ञानी शौनक जी, तारकासुर के अंत के पश्चात तीनों लोकों में परमानंद का वास था। सृष्टि में शांति व्याप्त थी। स्वयं देवाधिदेव गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे।
2: देवी पार्वती,
3: कहिए देव।
2: हमारी इन दोनों संतानों ने हम जैसे वीतराग तपस्वी को भी गृहस्थ आश्रम के महत्व और आनंद से परिचित करवा दिया है।
4: नारायण नारायण, ये आपने क्या कह डाला देवाधिदेव?
2: क्यों मुने नारद, ऐसा कौन सा असत्य निकल गया हमारे मुख से जिस कारण आपके अचानक दर्शन प्राप्त हुए हमें?
4: नारायण नारायण, असत्य और आपके मुख से? उस दिन तो त्रिलोकी ही विलुप्त हो जाएगी महाप्रभु। आया तो था शिव कुमारों के दर्शन करने, परंतु आपका कथन सुन मन कौतूहल से भर उठा, चरण यहीं ठिठक गए।
3: कैसा कौतूहल नारद मुनि?
4: देवी पार्वती, संपूर्ण त्रिलोकी जिनकी गृहस्थी है और उसके वासी जिनकी संताने हैं, वो महादेव गृहस्थ आश्रम के महत्व और आनंद की बात अब कर रहे हैं।
2: मुने नारद, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, अन्य अनेक भी जानते हैं, परंतु उन अनेक के अतिरिक्त भी अनेकानेक हैं जिन्हें इस दैवी सत्य का अनुभव नहीं है। ये मात्र उनकी मान्यता ही है और अनुभव मान्यता को दृढ़ ही करता है।
3: परंतु देवाधिदेव, अनुभव के आधार पर मान्यताएं भंग भी होती हैं।
2: आप सत्य कह रही हैं देवी पार्वती, गृहस्थ जीवन के अनुभव से हमारी ये मान्यता भंग हुई कि जन कल्याण का कार्य मात्र वैरागी निष्काम और गृहस्थ बंधन से मुक्त रहकर ही संभव है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हम तारकासुर का वध करने में अक्षम थे, परंतु महालोक कल्याण का ये कार्य हमारे पुत्र कार्तिकेय ने किया।
3: मुने नारद, अब से ही सृष्टि का नियम होगा, माता पिता के अपूर्ण कार्य उनकी संतानें पूर्ण करेंगी, ये उनका प्रथम कर्तव्य होगा।
2: अतः हम शिव गृहस्थ आश्रम को उतनी ही मान्यता प्रदान करते हैं जितनी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास को करते हैं। हर अवस्था का अपना महत्व और उपयोग होगा।
4: नारायण नारायण, आप धन्य हैं महाप्रभु और महादेवी आप भी। मानव जीवन के सुचारू संचालन के लिए आपने ये बहुत ही उत्तम नियम प्रतिपादित

0: परंतु देवाधिदेव, आपका ये नियम पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय पर भी लागू होता है अथवा नहीं? ये
1: मुनि नारद, हम आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझे।
0: भगवान, आपके दोनों पुत्र अब ब्रह्मचर्य की अवस्था पार कर चुके हैं। आपके द्वारा प्रतिपादित नियम के अनुसार तो अब उन्हें अगली अवस्था में प्रवेश करना चाहिए।
1: अगली अवस्था?
0: देवाधिदेव, आपसे कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने की कुचेष्टा करने के समान होगा, परंतु विनम्र निवेदन करने की अनुमति चाहूंगा।
1: कहिए ब्रह्मा पुत्र, आप हमारे पुत्रों के शुभ चिंतक हैं। हृदय का विचार हृदय में ना ही रखें, निर्भीक होकर कहें।
0: नारायण नारायण, महाप्रभु, किंचित पुत्र प्रेम में आप और महादेवी इस तथ्य से परिचित होकर भी अपरिचित रहना चाहते हैं कि दोनों कुमार वयस्क हो चुके हैं।
1: मुने नारद, ब्रह्मा जी आपकी प्रशंसा व्यर्थ ही नहीं करते।
0: नारायण नारायण,
1: आप गंभीर से गंभीर विषय इतने सरल शब्दों में उठाते हैं कि दूसरे के मानस पर दृढ़ता से अंकित हो जाते हैं।
0: नारायण नारायण, महाप्रभु, ये भी इस नारद को आप ही का आशीर्वाद है।
1: देवी पार्वती
2: जी। स्वामी,
1: ब्रह्म ऋषि का यह कथन अति विचारणीय है। हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं।
2: धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूं नाथ। ये प्रश्न अनेक अवसरों पर मेरे मानस पर भी कौंधा। माता हूं, पुत्रों को क्षण क्षण बड़े होते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, परंतु आपके समक्ष ये विचार प्रस्तुत करते मैं झिझकती रही।
1: ऐसा क्यों पार्वती?
2: आपके भक्त वत्सल स्वरूप के दर्शन तो मैं चिरकाल से करती आ रही हूं, परंतु संतानों के प्रति आपका वात्सल्य रूप देख मैं भी मुग्ध रह गई। स्वार्थवश इस छवि को तोड़ना ना चाहा। स्त्री हूं, भावनाओं के अधीन हूं।
1: देवी पार्वती, स्त्री की भावनाएं उसका बल होनी चाहिए, ना कि उसकी क्षीणता। स्त्री का एक धर्म और भी होता है
2: जी।
1: समय समय पर पिता को उसके कर्तव्यों से अवगत कराते रहना। बताएं देवी, अब हमारा कर्तव्य क्या है?
2: देव, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि संतानों के बड़े होने पर उचित वर वधु ढूंढ उनकी गृहस्थी स्थापित करने में सहायता करना।
1: पहले किसका विवाह निश्चित किया जाए, पुत्र गणेश का अथवा पुत्र कार्तिकेय का? हमारे समक्ष दोनों ही समान हैं, दोनों ही विवाह योग्य हैं।
0: नारायण नारायण, देवाधिदेव, आपका ये सेवक किस दिन काम आएगा? मैं अभी जाकर पार्वती नंदन गणेश और शिव पुत्र कार्तिकेय की इच्छा जानने का प्रयास करता हूं। देखें विवाह का इच्छुक पहले कौन है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण।
3: प्रणाम ऋषिवर नारद।
0: वंश विस्तारक भव, पार्वती नंदन गणेश।
4: मुनिवर, मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए।
0: कुल दीपक भव, पुत्र कार्तिकेय।
3: ये क्या मुनिश्रेष्ठ, आज आप हमें ये कैसे विचित्र आशीर्वाद दे रहे हैं? सदा तो आप हमें चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, विजयी भव इत्यादि के आशीर्वाद देते आए हैं,

0: और आज
1: गजानन, हमारे ये आशीर्वाद समय की आवश्यकता तथा आपके माता पिता की इच्छा का फल है।
2: समय की आवश्यकता, माता पिता की इच्छा, हम आपका तात्पर्य नहीं समझे ऋषिवर।
1: नारायण नारायण। पुत्रो, समय की आवश्यकता कहती है कि आप शैशव, बाल एवं किशोरावस्था लांग चुके हैं, युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, अतः वंश विस्तार आपका परम कर्तव्य बन जाता है और यही आपके माता पिता की हार्दिक इच्छा भी है कि आपका विवाह कर दिया जाए।
2: परंतु हमारी तो ऐसी इच्छा नहीं है।
1: पुत्र कार्तिकेय, माता पिता की इच्छा पूर्ण करना संतान का धर्म होता है।
0: परंतु विवाह के पश्चात हम अपने अनुज से क्रीड़ा कैसे कर पाएंगे?
1: नारायण नारायण। गौरी नंदन, विवाह का ये अर्थ नहीं कि बाकी संबंध समाप्त हो जाते हैं। हर संबंध का अपना महत्व होता है और पुत्र गणेश, बाल क्रीड़ा सबको एक समय तक ही शोभा देती है। बड़े होने के साथ साथ दायित्व बढ़ते हैं और क्रीड़ा का समय कम होता जाता है और फिर शीघ्र ही आपको क्रीड़ा के लिए नए साथी भी तो मिल जाएंगे। नारायण नारायण।
0: वो कैसे?
1: बाल गोपाल के रूप में।
0: नारायण नारायण, आप तो बहुत दूर की सोचते हैं प्रभु।
1: नारायण नारायण।
0: पहले मैं विवाह करूंगा।
2: नहीं भ्राताश्री, पहले मैं विवाह करूंगा।
0: मैं ज्येष्ठ हूँ।
2: मैं शिव पुत्र हूँ।
0: मैं शिव गणों को परास्त करने वाला हूँ।
2: मैं महाबलशाली तारकासुर का नाशक हूँ।
0: मैं अग्र पूज्य हूँ।
2: मैं भी सबका वंदनीय हूँ।
3: शांत शांत हो जाओ पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे पुत्र हो। जैसे षडानन हमें प्रिय है, वैसे ही गणेश भी हमें प्रिय हैं।
4: तुम दोनों समान बलशाली और वंदनीय हो।
1: नारायण नारायण। प्रभु, तो ये कैसे निश्चित किया जाए कि इन दोनों में से पहले विवाह का अधिकारी कौन है?
4: पुत्रो।
2: जी पिताजी।
4: पुत्रो, तुम दोनों हमें एक समान प्रिय हो। तुम में से किसी एक पर हमारा विशेष अनुग्रह नहीं है। हमारे लिए ये निर्णय ले पाना कठिन हो रहा है कि पहले किसका विवाह किया जाए। इस स्थिति से निपटने का हमें एक ही उपाय सूझ रहा है।
2: आज्ञा करें पिताजी।
4: आप दोनों को परीक्षा देनी होगी।
3: परीक्षा? कैसी परीक्षा देवाधिदेव?
4: पार्वती, हमने निर्णय लिया है कि हमारे ये दोनों पुत्र पृथ्वी की परिक्रमा करें। इनमें से जो भी पहले लौटेगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा।
2: हमें स्वीकार है। यदि मैं एक वर्ष में लौट आया तो?
0: यदि मैं 6 मास में लौट आया तो?
2: मैं 3 मास में लौट आया तो?
0: मैं क्षण भर में लौट आया तो?
1: नारायण नारायण। प्रतिस्पर्धा आरंभ होने से पूर्व वाक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई।
3: पुत्रों, पहले जाओ तो अपने पिता द्वारा निर्धारित परीक्षा में भाग तो लो।
0: नहीं माते, पहले वचन दे। यदि मैं पहले लौटा तो मेरा विवाह पहले होगा।
3: वचन दिया
0: तो हम जाए माते?
3: हाँ पुत्र।
0: अपने वचन का स्मरण रखिएगा।
3: हाँ पुत्र, स्मरण रहेगा।
2: माते, पिताजी, आपकी चरण धूलि ले हम प्रस्थान की अनुमति चाहते हैं।
5: हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है।
1: नारायण नारायण नारायण।
0: अरे अनुज, कार्तिकेय तो तीव्र गति से प्रस्थान कर गए, हम तो पीछे रह गए। अब हम क्या करें? इस भारी भरकम शरीर के कारण पृथ्वी की परिक्रमा तो क्या हम एक कोस भी नहीं चल पाएंगे। क्यों ना अपनी सवारी मूषक की सहायता ली जाए। नहीं।

0: उनकी गति तो अति मंद है। अब हमें पहले विवाह सुख कैसे प्राप्त होगा? हम तो अपने अनुज से ही हार जाएंगे, सब हम पर कटाक्ष करेंगे।
1: पार्वती, पुत्र गणेश अभी तक यहीं विराजमान है।
2: हाँ स्वामी, किन्हीं गहन विचारों में डूबे हैं। पुत्र गणेश क्या सोच रहे हैं?
0: उपाय
2: उपाय?
0: हाँ माते, हम सोच रहे हैं कि यदि हम आपकी पूजा करने के पश्चात परिक्रमा करें तो हम अवश्य विजयी होंगे।
3: नारायण नारायण। सावधान महाप्रभु, किसी नई परिभाषा की संरचना होने जा रही है।
0: माते, पिताजी ये लीजिए, मैंने आप दोनों की पूजा करने के लिए ये दो आसन स्थापित किए हैं। आप इन पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए।
1: लो पुत्र, हम बैठ गए।
0: ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमः।
3: नारायण नारायण। अरे ये क्या,
4: गजानन ने तो जाप करते हुए स्वयं देवादिदेव तथा महादेवी की 7 बार प्रदक्षिणा कर डाली।
0: हे माते, हे पिताजी, अब आप मेरा विवाह कर दीजिए।
2: विवाह? परंतु पुत्र गणेश।
0: माते, आपने वचन दिया था कि यदि मैं पहले लौटा तो पहले मेरा विवाह होगा।
2: अवश्य होगा पुत्र, परंतु पहले परिक्रमा तो पूर्ण करके आओ। कुमार गया हुआ है, तुम भी जाओ और उससे पूर्व आने का प्रयत्न करो।
0: माते, मैं पृथ्वी क्या पूरे संसार की 7 बार परिक्रमा कर चुका हूँ।
1: ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र, तुम तो हमारे नेत्रों से ओझल भी नहीं हुए, परिक्रमा कब कर डाली?
0: पिताजी, आपके द्वारा प्रतिपादित वेद शास्त्र क्या ये नहीं कहते कि पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति ही उसका तीर्थ उसका संसार होते हैं? यदि वे वेद शास्त्र सत्य है तो मैंने आप दोनों की 7 बार परिक्रमा कर संसार की 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली हैं। आपने तो मात्र 1 परिक्रमा करने को कहा था।
1: पुत्र गणेश, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है, जिसके पास बल होता है वही विजयी होता है। पुत्र, वेद शास्त्र में और पुराणों में पुत्र के लिए जिस धर्म पालन की बात कही गई है वो तुमने पूर्ण की है। मुने नारद।
3: आदेश महाप्रभु।
1: जाइए, ब्रह्मा जी से निवेदन कीजिए कि हमारे इस अति योग्य पुत्र के लिए सुयोग्य वधु का चयन कर इसका विवाह संपन्न करवाएं।
3: जैसी आज्ञा भगवान। नारायण नारायण नारायण।
5: और विप्रवर सूत जी, परमपिता ब्रह्मा ने शिवजी के आदेश का पालन करते हुए प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से गजानन का विवाह करवा दिया। तो महाभाग सूत जी, गिरिजानंदन भी गृहस्थ हो गए।
6: हाँ शौनक जी, काल की नियति से सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक 2 दिव्य पुत्रों की उत्पत्ति हुई।
5: सूत जी, कुमार कार्तिकेय का क्या हुआ? क्या वे पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण नहीं कर पाए?
6: शौनक जी, जब कुमार कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटे तब तक ये सब कुछ घटित हो चुका था। उन्हें भ्राता के विवाह और पुत्र उत्पत्ति से सुख भी पहुंचा और दुख भी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे आजन्म कुंवारे ही रहेंगे। माता पिता के रोकने पर भी वे क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने चले गए।
5: अच्छा, तभी शिव लीला में कहीं कुमार के विवाह का वर्णन नहीं है।
6: हाँ शौनक जी, और उसी दिन से सृष्टि में कुमारत्व अर्थात कुंवारेपन की परंपरा पड़ गई।

0: फिर क्या हुआ सूत जी?
1: कालचक्र अपनी गति से घूमने लगा। चारों ओर सुख और प्रसन्नता का वास था, जो दैत्य माता दीति को खल रहा था।
2: तारकासुर की मृत्यु।

0: टहनियां हो उठा है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सृष्टि में अपनी उपस्थिति दर्शानी ही पड़ेगी, परंतु कैसे दिखती, कैसे करोगी ये? किससे मंत्रणा करूं? शुक्राचार्य को तो अपमानित कर दैत्य गुरु पद से हटा चुकी हूं। हाँ, सेनापति, एकमात्र सेनापति ही विश्वास पात्र रह गए हैं, दैत्य सेनापति।
1: आज्ञा दैत्य माता।
0: एकमात्र आप ही रह गए हैं जो आज भी हमें दैत्य माता कह के संबोधित करते हैं। पहले तो त्रिलोकी में इस दैत्य माता की जय जयकार गूंजा करती थी।
1: दैत्य माता, ये तो समय का फेर है, अच्छे और बुरे काल तो आते जाते रहते हैं। धैर्य रखें, ये बुरा काल भी समाप्त हो जाएगा।
0: कैसे, कब, कब हमारा शासन पुनः स्थापित होगा? कब इंद्र की माँ अदिति हमारे समक्ष नतमस्तक हो, पुनः अपने जीवन की भिक्षा मांगेगी? कैसे हंस हंस कर दुलारती है वो अपने पुत्र इंद्र को? हमारा कलेजा छलनी हुआ जाता है। दैत्यों की जयकार सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं।
1: धीरज रखें दैत्य माता, आपके तीन प्रपौत्र अवश्य आपकी इस अभिलाषा को पूर्ण करेंगे।
0: कौन? तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष? वो तो हमें ही अपनी पिता की मृत्यु का दोषी ठहराते हैं। कहते हैं न हम शुक्राचार्य का अपमान करते न ये सब होता, परंतु हम शुक्राचार्य की बात कैसे मान लेते? कैसे उस शिव से क्षमा प्रार्थना करते?
1: दैत्य माता, दैत्य नीति तो यही कहती है कि अपने लाभ के लिए किसी की चाटुकारिता करना असंगत नहीं होता। लाभ और बल प्राप्त हो जाने के पश्चात उसी व्यक्ति को ठोकर मारी जा सकती है जिससे कभी क्षमा मांगी हो।
0: तो आपका क्या मत है दैत्य सेनापति, हमें क्या करना चाहिए?
1: दैत्य माता, आपके समक्ष मैं बहुत तुच्छ हूं, परंतु एक निवेदन करना चाहूंगा।
0: कहो दैत्य सेनापति, निसंकोच कहो।
1: समय की मांग कहती है कि शुक्राचार्य को पुनः दैत्य गुरु का पद सौंप दिया जाए, इससे तारकासुर के तीनों पुत्र भी प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ भी हो, शुक्राचार्य दैत्यों के हितैषी हैं, वे अवश्य ही दैत्य उत्थान का कोई मार्ग खोज निकालेंगे।
0: आप उचित कहते हैं दैत्य सेनापति, है तो शुक्राचार्य ऋषि ही, देवताओं की भांति ऋषि भी क्षमा दान देते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, भूल जाते हैं कि क्षमा हृदय से मांगी जा रही है अथवा स्वार्थवश। हम स्वार्थवश अवश्य उनसे क्षमा मांगेंगे दैत्य सेनापति, अवश्य क्षमा मांगेंगे।
2: महाभाग सूत जी, ऐसे तो दैत्य माता दिति ने ये तथ्य स्वीकार कर ही लिया कि समय बहुत बलवान होता है, वो किसी से कुछ भी करवा सकता है।
3: हाँ महाज्ञानी शौनक जी, समय का फेर कुछ ऐसा ही होता है, क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, और फिर समय के अनुसार रंग बदलना तो दैत्य नीति ही थी। दैत्यों ने सदा भगवानों से वरदान प्राप्त कर उनका उपयोग देवताओं के विरुद्ध ही किया।
2: परम पिता द्वारा प्रतिपादित सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की परिभाषा भी तो यही थी सूत जी।

0: और इन गुणों के आधार पर ही तो सब जीवों का चरित्र निर्माण हुआ था। फिर राक्षस कैसे अपने गुण त्याग देते, उनको तो उलट पलट करते ही रहना था।
1: आपका कथन पूर्णतया सत्य है शौनक जी, और उथल पुथल की इस नीति ने असुरों को एक बार फिर सत्ता के कगार पर ला खड़ा किया।
0: वो कैसे सूत जी?
1: इसका विस्तृत वर्णन अगली बार करेंगे शौनक जी।
0: जैसी आपकी इच्छा सूत जी।

पतिव्रता पुरुष की धार्मिक स्त्रिया पतिव्रता पुरुष की धार्मिक पुत्र उपजती।

नगरी घरी अंतरी अयोध्या मन निर्मित नगरी।

दशरथास जा सीधी भार्या, दशरथास जा सीधी भार्या, सुवंश राजा तुम की आर्या, सुवंश राजा तुम की आर्या, सिद्धपति का सेवा कार्या, सिद्धपति का सेवा कार्या, सहुश्रुता रूप शालिनी अतुल प्रभा सुंदरी, ओ अतुल प्रभा सुंदरी, अयोध्या मनु नीत नगरी, अयोध्या

ग्रहशास्त्र में एक अपने पण ग्रहशास्त्र में पुत्र जनन अजुनी नवता प्रीति का हम बड़ी ओ

I know.

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰੇ ਹੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में काज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

0: यह आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस विशेष नाटक की चौथी कड़ी सुनवा रहे हैं। पिछली कड़ी में आप माता कैकेयी के हठ और कोप भवन का प्रसंग सुन चुके हैं। वचन से आबद्ध पिता के सम्मान के लिए प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्यापुरी की समस्त जनता को रोता छोड़कर चले जाते हैं। अब सुनिए आगे।

0: तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
1: प्रभु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम।
2: बैठो निषादराज, सब कुशल तो है?
1: आपके चरण कमल के दर्शन से मैं सकुशल हूँ। परिवार सहित मैं आपका सेवक हूँ। कृपा कर मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, जिससे आपकी कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो।
2: सखे, तुमने सच कहा है, किंतु पितृ आज्ञा बरस चारि दस बासुबन मुनिप्रत बेशु आहारु, ऐसी दशा में ग्राम बासु नहीं उचित।
0: निषाद राज को यह सुनकर

0: उन्होंने श्री राम के लिए सब प्रबंध कर दिया। श्री राम ने संध्या आदि से निवृत्त होकर शयन किया। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवही सोवन मृदु बानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। निषाद राज लक्ष्मण के पास आ बैठे और कहने लगे,
1: लक्ष्मण जी, इंद्र महल से भी अधिक सुहावना अयोध्या का राजमहल है। वहां की सुख सुविधाओं में सोने वाले सीताराम रति और कामदेव के दर्प को अपनी शोभा से मर्दित करते थे, वही आज सोवत महे विधि पामन के ही।
2: निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघु पीर चरण रथ हो।
1: आप यथार्थ कहते हैं। अरे बातों ही बातों में सगड़ा हो गया।
3: तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होए।
4: तात सुमंत्र, आपने धर्म के सारे सिद्धांतों का संचय किया है, आप भली प्रकार जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मेरी ओर से आप पिताजी के चरण स्पर्श कर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें और उनसे निवेदन करें कि मेरे लिए किसी बात की चिंता वे ना करें। आपका भी यही कर्तव्य है, आप हम लोगों की चिंता में पिताजी को कोई कष्ट ना होने दें।
2: केकेई से प्रतिज्ञा करते समय उन्हें कष्ट नहीं हुआ?
4: लक्ष्मण, ये बड़ी अनुचित बात है। सुमंत जी, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण का संदेश वहां जाकर न कहना।
3: सीता जी वन के दुखों को न सह सकेंगे, इसलिए सीता जी के अयोध्या लौटाने का उपाय आप और हम करें, ये भी महाराज का आदेश था। अन्यथा उन्होंने कहा था कि मैं उसी प्रकार नहीं जी सकूंगा जैसे जल के बिना मछली।
4: सीते, यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन तथा परिवार सबकी चिंता मिट जाए।
5: प्रभु, आप करुणा सागर और परम विवेकी होकर ऐसा कहते हैं? क्या तन को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहीं विलग रह सकती है?
3: किंतु राजकुमारी जी,
5: बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हु सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा।
3: मैं अयोध्या लौटकर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? महाराज को क्या उत्तर दूंगा?
5: सासु ससुर सन मोरे होते, बिनय करब परि पाए। मोर सोच जनि करई कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और फिर प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे।
0: सीता की शीतल वाणी सुनकर मणिहीन सर्प की भांति सुमंत्र व्याकुल हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए।
4: प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ।
6: नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना।
4: क्या कह रहे हो तुम?
6: चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु ऐही।
4: कहां चरण और कहां चढ़ी?
6: जी हां, जानता हूं, आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है, और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता।

0: माता, मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहों, मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहों, बरु तीर मारहू लखन, पै जब लगिन पाए पखारी हों, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हों।
1: सीते, लक्ष्मण, देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जा जल्दी कर, जल्ला पैर धोले और शीघ्र पार उतार।
2: केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार कर जलपान करके केवट ने परिवार सहित अपने आप को धन्य माना, फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम को गंगा पार ले गया।
0: लीजिए महाराज, अब आप गंगा पार आ गए।
1: अरे, हमने इसे कुछ भी नहीं दिया।
3: ये मणियों की मुद्रिका ही इसे दे दो।
1: केवट, पार की उतराई ले लो।
0: नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा।
3: नहीं केवट, तुम्हें उतराई ले लेनी चाहिए।
4: अरे, तुम अपनी मजूरी लेने से इनकार कर रहे हो? कैसे केवट हो तुम?
0: मैं तो केवल प्रभु के चरणों में भक्ति चाहता हूँ।
1: तथास्तु।
2: इसके पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनिवर ने श्री राम जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान कर मुनि को सिर नवाकर वे वहां से चल दिए। फिर उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समस्याम। श्री राम जी ने निषाद राज को समझा बुझाकर विदा कर दिया। वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले।
5: अरे आओ आओ, उनके दर्शन कर इसी क्षण नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो।
6: भद्र, कैसी शीतल छाया है, हमने नरम घास और कोमल पत्ते बिछा दिए हैं, आप लोग थक गए होंगे, खबर यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिए,
5: फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
1: आप लोग व्यर्थ कष्ट न करें, आपकी कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं।
6: यह लीजिए, आपके लिए शीतल जल है, आचमन तो कर लीजिए।
1: सीते, लक्ष्मण, जल ग्रहण करो।
3: धन्यवाद।
5: चलिए, हम आपके साथ आगे तक चलेंगे।
1: नहीं नहीं, आप लोग हमारे लिए कष्ट न करें, कृपया लौट जाइएगा।
3: चलो चलो सखी, कैसे माँ बाप है इनके, ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया। विधाता की कठोरता को कौन दोष दे सकता है भला। आह, कितने सुंदर है ये।
7: वाह,
3: इन्हें देखकर थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहुमरे के मृग देख ही दिया से।
7: आओ चले इनके पास चलकर इनसे कुछ पूछें।
3: चलो राजकुमारी, विनय हम करही, तियाए सुभाए कुछ पूछा तो डरही।
7: स्वामी, अभिनय क्षम भी हमारी, बेलगु न मानव जानी गवारी।
3: कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे।
7: सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे।

0: विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत जाहि चले देखत बिपिन सिय सौमित्र समेत। आगे राम लखनु बने पाछे तापस भेख विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसी प्रकार देखत बन सर सैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
1: हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी हथेली पर सारा संसार बेर के समान है। माता कैकेयी के व्रत निर्वाह के लिए पिता की आज्ञा का पालन और भरत जैसे भाई का अकंटक राज तिलक हो, इस कारण मैं वन आया हूं। यहां आकर आपका दर्शन हुआ, वह मेरे पुण्य का प्रभाव है।
2: साधु साधु, राम आप रघुवंश के पताका हैं। ऐसा कहना आपके लिए सहज और सरल ही है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहीसु महिधर लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशचर
1: अनि। मुनिवर, यह सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है, मैं तो आपका।
2: आपके संबंध में और क्या कहूं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह, जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेउ न जान ही मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानिन हारा, सोई जाने जही देव जनाई जानत तुम्ही तुम्हें हो जाए। राम देख सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध हुए सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा।
1: मुनिवर आज्ञा दें, मैं कहां वास करूं।
2: ए राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अधिक क्या कहूं, जस तुम्हार मानस विमल हंस ने जी हां त्यासु मुक्ताहल गुन गन चुनई

0: राम बसहु हियाँ तासु, स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन कई बसहु सिय सहित दो भ्रात।
1: महामुनि वाल्मीकि ने श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके व्यास से सत्पुरुषों की महिमा का विस्तार से वर्णन कर चित्रकूट की अपरिमित महिमा का भी बखान किया। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी समेत चित्रकूट पर निवास करने लगे। इधर तो श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, उधर जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या आए वो कथा सुनिए।

0: कि वे वन को चले गए। सखा राम सिए लखु जय तामो ही पहुंचाओ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव।
1: महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी। महाराज श्री राम ने गुरु वशिष्ठ भरत पुरवासी आदि सभी को सांत्वना के संदेश दिए हैं और भरत जी से कहने के लिए कहा है कि वे सब माताओं की समान सेवा करें और पिता को उसी प्रकार रखें जिससे जिससे उनको कभी मेरी चिंता ना हो।
0: और लक्ष्मण तथा सीता ने कुछ नहीं कहा?
1: सीता जी कुछ कहना चाहती थी, उनकी वाणी अवरुद्ध थी, स्नेह से शिथिल, वे कुछ कह नहीं पाई।
0: हे सुमंत कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरे स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्रिय पुत्र वधु जानकी कहाँ है। राम कौशल्या श्रवण कुमार की कथा तो तुम जानती ही हो, वही शाप अब मुझे लगा है, वही शाप मुझे लगा है। राम के बिना इस अवस्था में कैसे मैं जीवित रह सकूंगा, हमें धिक्कार है। प्रेम का प्रण निभाने वाले इस शरीर को धारण करके ही क्या करूंगा।
2: और रघुनंदन प्राण पीते तुम बिना जिये बहुत दिन बीते, और जानकी लखन रघुवर पितु चित जातक जलधर आराम आराम आराम।
1: महाराज महाराज महाराज।

राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। प्रातःकाल होने पर मुनि वशिष्ठ ने समयानुकूल सब प्रकार का इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी,

0: हमारे नैहर में कुशल तो है?
1: हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं?
0: तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारू, भूपति सुरपति पुर पगुथारू।
1: तात, तात,
0: भरत,
1: तात,
0: भरत,
1: अंत समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ।
0: बेटा भरत, राजा से मैंने दो वर मांगे थे, राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परिणाम स्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। तात, राव नहीं सोचे जो
1: पापिन सब ही भांति कुल नासा। यदि तुम्हारी ऐसी ही कुरुचि थी तो पैदा होते ही तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला?
0: बेटा,
1: पेड़ को काट कर पत्तों को सींच रही हो, तुमने तो मछली के जीवन आधार पानी को ही उलीच दिया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी, तू जननी भाई विधि सन कछु न बसाए।
0: बेटा,
1: हाय, जब तय कुमति कुमत जी अठयउ, खंड खंड होई हृदय न गयो, परमागत मन भई नहीं पीरा, करिन जी मुह परेउ न कीरा। पर मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि भूप प्रतीत तोरी किमिकी नहीं, मरण काल विधि मति हर लीनी।
0: लेकिन बेटा, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी मंगलाकांक्षिणी हूँ।
1: सच पता तू कौन है? सारे संसार के जीव जंतु जिस राम को प्राण से अधिक प्रिय मानते हैं, वो भी तुझे अप्रिय जान पड़े। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई, आंखें उठी उठी बैठ ही जाए।
2: तू रोक भी।
1: कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तभई काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे।
0: हे पुत्र, तुम ठहरे थे
1: जननी, जे अघ मात पिता सुत मारे, काय गोठ बहुसुरपुर जारे, जे अघ तिय बालक बध कीने, मीत महीपति बाहुर दीने, जे पातक उपपातक आही, करम बचन मन भव कभी कही, ते पातक बोही हो विदाता, जो यहु हो मोर मत माता, जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, ते कई गति बही देव विधि, जो जलनी मत मोर।
0: विधु विष चवे स्रवे हिमु आगे, होई बारी चर बारी बिरागी, भये ज्ञानु परु मिटे न मोह, तुम्हार राम ही प्रतिकूल न हो।
3: अस कही माँ तु भरत ही लाए, थन पय स्रव ही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे

0: बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण, राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया।
1: वत्स, आओ मेरे पास बैठो। सुनो भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, अस विचार के ही देई ये दोसु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु, तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही।
2: लेकिन
1: भरत, राजा को अपने वचन प्रिय थे न कि प्राण, उनके प्रिय वचन का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
2: आप कह तो रहे हैं पर
1: भरत, सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ, जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना।
3: हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा का आदर करना चाहिए और उसे कल्याण प्रद मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति समझकर दुख को त्याग देना चाहिए।
2: आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरी भलाई है, ये मैं भली भांति जानता हूं, पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, शोक समाज राज कहीं लेखें, लखन राम सिय पद बिनु देखें। आप सब आज्ञा दें, मैं राम के पास जाऊं, मेरा कल्याण इसी में है।
3: बात मानो बेटा, तुम पर ही सबका ध्यान है, उठो।
1: वत्स, कौशल्या की बात मानो, वे ठीक कह रही हैं, उठो और पश्चाताप मत करो।
2: मेरा जन्म तो रघुनाथ को वन भेजने के लिए हुआ था, अभागा मैं झूठ मूठ ही पछता रहा हूं, किंतु आपने दारुण दीनता, कहूं सब ही सिरुनाई, देखें बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरन न जाए। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिन बूझा, एक ही आंक इहई मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही।
4: धन्य धन्य है महाराज भरत,
5: धन्य है महाराज भरत।
2: पंचो, आप लोग मुझे आज्ञा और आशीष दें, इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी विनती सुनकर मुझे अपना मान, राम अयोध्या लौट आएंगे, मुझे राम का भरोसा है।
4: महाराज भरत की जय, महाराज भरत की जय।
0: भरत जी का निर्णय सुनकर सबके मन में अपार प्रसन्नता हुई, सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी करने लगे। कहां ही परस्पर भाव बढ़ काजू, सकल चले कर साजे ही साजू, जे ही राख ही रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा कि कि राज तिलक का सारा सामान

साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। माताओं को आर्त जानकर उनके लिए भी पालकियां सजाई गईं। पूरी तैयारी करके अपार जन समूह के साथ भरत जी वन को चले।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।